nimbi tawa chen khapar gawa chelzi ya gaeshti nga sang dong ye da yin ji su no ta gaeshti na nga su kon di a kein go de chhtni go de ta htin go nga su ko kun ga a di gata de la nga su ko nga sang de si htin khu cha da yin si kem yin go de de na ta dug da yin go de si on dug da ge de de de ta gaeshti nga sang dong ye da yin ji na la wo ta dug da khun ji go dong ta chen nim de de la a ma sha ge nga dong ta chen de si na ओते थातक यिन खुदिला आ गवर्च गवर्च नवास गवर्च पातस गवर्च केस छातम थापा छातम जुआ था पियडाने बिस गुरु ताम दुदान खुदे नज को नानकी आ दी छावाला जुआ नि दि नज को जुआ खुदि थरता वटान खुदि नज को जोंनि यनजी ते गने बु तो खुदि खाग ちゃうちゃんのんじでちゃうちゃんすくものなのこんでどんたちゃんすくのちゃうちゃんすくのにがどうちぎれパプルがわちるじもうほっといんじゃすこんでんでがいのまとこんでちゃぷしゃばってじょくてさとこんじゃすこがんとんじゃすこがんであどだとかたんあましゃらんじゃすこんであがるしゃばとほてあなこれあやしちゃんがすのどんやだんちんどんたちんってじょんし マノネジナズコがアンディチャトンジョアテピアダニエンビチャワチンってくずなおつくとこんでジナズコがこうとんらとんけジナズコンバジグラカネクムレズナたとにがんとこんでりつくジナズコナンバムダンデリおまねジナズコがガワチェパガワチェパスコにかつくジナズコがしてやりたらくにジナズコがナンバグラカネムダノこんでジナズコンドンタチェングイラチグガワチェパラ मानव ने जनाज को ये ला जनाज को जी चिका दुम्बी जनाज को गा चेपा तुम्हें इसका ची कुछ जो नहीं ती तावेस गला अंधे थकतं तुने निका करो आजी थकतं निका करो आजी ले ते त्रिगु जो नहीं अगला तो इंजन सोमी नंसी ठगपा गोही जन नहीं तो गोजन से चले इसी उन गोपे जन जी मूसा पा जी गोजन जी मूसा ना तो अंधे गर्शर शेनी ती अडप्ट मस्तर गोपे जन नहीं गर्शल यूल कंगियों रंगा शिगलां गर्शल ची छठल जरिये गुप्पा शिगिंजी ना नं कोहों रंगा गर्जी चल मामे ममल सोसु या गर्शल ये कंगरंगा शिगिंजी तां दे गर्शा जगला अंधे गर्शल तो गुलशी थोमले न्याज को गर्शा जो को यूल कंगियों रंगा जगता गर्शल कंगियां जो को छठल कनोने मामे ममल दुचुई ना तो कुआं जरिंग कोनी तमोस की हैं जी तमोस ना तो कुआं गोजी नहीं बोले ते ना निपाल आकर ने गोही जेंची आनाम चंचल पाजी अये ना निखर सासम दीज दे तंग माँग तातंग गोजी छे तंग छेचन अजे तंग दीज अजीरंग अगं तंग माँगी वाजी हिजुल समु टोंबल पाजी अजेरंग थाव तंग टुआ तंग न्यामुन जो तंग थीचुम तंग जी अजरवा तो इंसन अजीरंग को पावो जी गुखे जंती ला नंसी ची रही ना निखर चासमी होती है जी ता कुंगो के अंदी थकचन में जरूर मुखों दे लोआं जने अधी जो के छत्ते जनों को थकचन